0: ये शेंजल की थी, शेंजल कोऑर्डिनेटर पर सब।
1: PTI Econ 1 Chantel.
0: Please return to the office, over.
1: Copy that, will be